0: क्योंकि हमारे फोन लाइन पर जुड़ गई है, नाम बताइए अपना।
1: मैम पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
0: क्या बात है, अपनी सुबह का जिस तरह से आपने परिचय दिया है कि अपने आप में बड़ा रोचक है।

0: होती है ये बताइए।
1: मैम मैं घर पे रहती हूँ और घर पे रह के घर के काम भी करती हूँ और साथ में आप लोगों से बातें भी करती रहती हूँ कॉल के माध्यम से।
0: रायबरेली के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा शहर है?

0: लें। कौन सी सहेली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम प्रतिभा रहानी है।
0: प्रतिभा रहानी जी, आप कहाँ रहते हैं, किस शहर से आप बात कर रहे हैं हमसे?
1: मैं पुणे से हूँ, राजपुर नगर।
0: प्रतिभा जी, अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या करती हैं और आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक आश्रम है, शिव साधना योग आश्रम नाम से, वहाँ पे वॉलंटियरिंग भी करती हूँ।
0: वहाँ पे आप एज वॉलंटियर जाती हैं,

0: कि आप सुनने से उन्हें पता लगा तो यहाँ पर आप कुछ सिखाती हैं करवाती हैं?
1: हाँ, वहाँ पे क्रीमी योगा सिखाया जाता है। तो वहाँ पे फिर मैं सेवा देती हूँ और वहाँ पे ध्यान शिविर भी होते हैं, जैसे कि विपश्यना ध्यान है, कुंडलिनी योग, क्रिया योग ध्यान है और शरीर शुद्धि के लिए पंचकर्म, कायाकल्प, ऐसे भी शिविर होते हैं।
0: आप किस तरह की सेवा यहाँ पर देती हैं?
1: मैं वहाँ पे योगा सिखाती हूँ और जो शिविर होते हैं कायाकल्प पंचकर्म वहाँ पे सेवा देती हूँ।
0: आपको पता है अभी इसलिए जून को योग दिवस माना जाता है?
1: हाँ हाँ,
0: तो हमारे बच्चों को बताएं कि महिलाओं के लिए योग किस तरह उपयोगी है और उनके जीवन में ये क्यों जरूरी है?
1: हाँ, तो योगा हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हेल्थ के लिए तो फिजिकल फिटनेस भी तो अच्छा है ही, पर अभी हम जैसे देख रहे हैं कि डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है या मेंटल हेल्थ किस तरह खराब होती जा रही है, तो हमारे लिए योगा बहुत इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। तो उसके लिए योगा थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए और अर्ली मॉर्निंग अगर हम थोड़ा योगा प्राणायाम करेंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, जो आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें।
0: क्या योग के जरिए कुछ समस्याएं हैं उनसे भी निजात हो पाती है?
1: हाँ, तो हमारा जो मेंटल स्टेट है जो अभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है जैसे कि सोशल मीडिया है, तो हम जब थोड़ा बहुत योग प्राणायाम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा डिसीजन लेने का तरीका वो चेंज होने लगता है, मजबूत स्टेबिलिटी आने लगती है, क्लियरिटी आने लगती है और अपने आप एहसास होने लगता है कि हम आनंद में रह सकते हैं, किसी की डिपेंड नहीं होते हैं। जब हम खुशी में होते हैं तो अंदर से खुश होते
0: हैं। तो योग हमें ये सारी चीज़ें सिखाता है।
1: हाँ,
0: और योग के साथ आप ध्यान के शिविर हैं उनमें भी हिस्सा लेती हैं और लोगों को उसका भी प्रशिक्षण देती हैं। और आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे स्वामी मोदी का पल भर में क्या हो गया ये सॉन्ग सुनना है।
0: बड़ी खूबसूरत पसंद है आपकी और आपको सुना रही है आपकी पसंद का स्वामी चिंता जी।

सभी प्रश्नों को धन्यवाद और वे प्रश्नियाँ जिन्हें अभी और इंतजार करना है हेलो से मिली कार्यक्रम से जुड़ने के लिए वो निराश ना हो अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा। क्या पता पहली बार में ही आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक हमें कॉल ना करें ताकि वे सखियाँ जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहती हैं उन्हें भी मौका मिल सके। हमारे पुरुष श्रोता उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो से मिली की रिकॉर्डिंग के समय वो हमें कॉल ना करें क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम ये बता दें हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार को दिन में सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 400-24-662। रिकॉर्ड नंबर है 28-68-70-288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24-662। रिकॉर्ड नंबर है 28-670-288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं HR पाटले। संपादन सहयोग मिला नम्रता के कोने से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाटिल। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। दीजिए अपने सचिव चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार। सखियों के दिन की सुबह हेलो सहेली।

के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गाँव जाना होता, उसने बहुत मदद करी है एक मनुष्य के दिखने को समझने में। इतनी दिलचस्प है, मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे

सुंदर हो जाएगी अध्यक्षता में राज्य में शहरी विकास और विद्युत योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इसमें राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के छूटे हुए 20,000 घरों में बिजली पहुंचाना केंद्र की प्राथमिकता है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय ने आज रामगढ़ प्रखंड विकास का अंचल कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर युवा शक्ति मंत्रियों और महिला समूहों के बीच 35 लाख रुपए के मदद किए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान के तहत मात्र 3 महीनों में 50 लाख टीके लगाने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंत्रालय ने कहा कि यह प्रगति भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती और देश भर में विभिन्न स्थिति के स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयासों को उजागर करती है। सरायकेला में पुलिस की ओर से आज एक जागरूकता रैली निकाली गई। साप्ताहिक बाजार और नगर क्षेत्र में भ्रमण के दौरान पुलिस कर्मियों ने लोगों को नशाखोरी के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करते हुए युवाओं से सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा और कर्माटांड थाना क्षेत्रों से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि इनके पास से 9 मोबाइल और 22 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र स्थित ईटागढ़ के दुर्गम जंगल से पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा गला शव बरामद किया है। पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद शव को रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस शव की शिनाख्त और मामले की जांच में जुटी है। मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आज आपके लिए पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। वरना अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुनगुनाते हुए ऑफिस से निकलने से पहले ही अनुभा ने माँ को फोन करके तैयार रहने की याद दिला दी थी। घर के गेट पर बजते हॉर्न और फोन पर लगातार बजती घंटी आज की शाम के लिए उसके उत्साह को जैसे रेखांकित कर गई। और माँ भी दरवाजों पर ताला लगाकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। माँ का बैठना था कि अनुभा सड़क के बेसहारा बेलगाम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को पानी की तरह निकाल ले। मेरी ड्राइव पर कुछ बातें करते करते ही डूबते सूरज को देखती हुई विभा अचानक से चुप हो गई। टोकने पर बोली, इस सागर की लहरों के साथ बीत रही ये शाम उस शाम की याद दिला रही है जब हम सब

साथ ही अनुभवी उन पुरानी छोड़ दी गई गलियों में पहुंच गई। बचपन से लेकर कॉलेज के दिन तक के दिन हंसते खिलखिलाते मानो पंख लगाकर उड़ते चले गए थे। मम्मी पापा के साथ की बेशुमार खुशनुमा यादों से सब ना जाने कितने पल उसकी यादों के आसमान पर चांद तारों से झिलमिला उठे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर रहे अनुभव रोज ही अपनी किसी न किसी सहेली अथवा पुराने स्कूल के शिक्षकों से मिलने निकल जाती थी। बचपन के दिनों और शरारतों को याद करते करते समय

थी। कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाते थे। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर अनुभा ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में मुंह छुपाकर अपनी मुखर होती सुर्खियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेश से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से जहाँ मिल गया और उसने माँ के कंधों पर हाथ रख दिए। माँ क्या हुआ, किस तरह क्यों रो रही है? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांस से बिखर गई। क्या करूं बिट्टो, मैं क्या करूं? लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही थी। अनुभा एकदम चौंक गई और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मन स्थिति में उनका हाथ थामे बैठी बस सांत्वना देती पीठ की सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समय के सहारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ जहाँ जाने कहा दस घोरता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा को समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़मना माँ को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह

को भी ले जाना चाहती थी। परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी थी, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों ने भी सब

को शांत करती वही पास ही रह गई। माँ सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और धैर्य रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाया है कि वह चीजों को समझ और सुलझा सके। आप स्वयं को संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के

आपकी घटिया जो आपकी आंखों में इतने आंसू दे दिया है। आपकी आंखों से बैठे ये आंसू मुझको भी भिगो रहे हैं। विवाह के मन में जैसे विचारों के बवंडर उठ रहे थे, मानो वह सोच रही हो कि क्या बताएं और कैसे बताएं। कभी उससे अपना रिश्ता सामने खड़ा हो संकोच की बाढ़ खड़ी कर देता

ना तो मजबूर हो सकती है और ना ही कमजोर। आप में तो इतनी सामर्थ्य है कि एक 2.5-3 किलो के वजन को स्नेह से अपने गर्भ में वहन करती है और उस अबोध शिशु को अपने स्नेह और संस्कारों से इतना सामर्थ्यवान कर दिया है कि वो अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के साथ ही दूसरों का भी सहारा बन सके। वह आपको सोचती थी मानो एक पल में ही किसी निश्चय पर पहुंच गई। सबसे पहले आप खुद को बेचारी और बेसहारा समझना और मानना बिल्कुल बंद कीजिए। आज कमजोर तो आप पढ़ ही नहीं सकती हैं। आप इस घर में नहीं रहना चाहती तो आप यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्या हुआ अगर नाना भी नानी मान नहीं रहे? आपकी बेटी आपकी प्रतिष्ठा है तो हूँ ना आपके साथ आपके पास हर घर। अनुभव ने अपनी हथेलियों में माँ की आंखों से बहने वाले आंसुओं को चुन लिया। आप अभी मेरे साथ चलेंगी और आपको आपके पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी और वादा मेरा है। पर माँ मुझे एक बार पापा से भी सवाल करने हैं।

के कंधों पर हाथ रखी। आप निश्चिंत रहिए क्योंकि कुछ बातों के जवाब तो पापा को देने ही पड़ेंगे। आपको चाहे नहीं परंतु मुझको तो चाहिए उनके जवाब। विभा ने अपनी सहेली बीवी को फोन करके बुलाया और अनुभा को उनके साथ उनकी सहेली सही मौसी के पास भेज दिया और अपने पापा अरुण का इंतजार करने लग गई। अरुण ने देर शाम को ऑफिस से आते ही अपना बैग और लंच बॉक्स दरवाजे पर ही छोड़ दिया। विभा आकर सब वहां से हटाकर सही जगह व्यवस्थित करने लगी। फ्रेश होकर आने के बाद भी उसने बैग को दरवाजे पर ही पड़ा दे आक्रोशित होकर विभा को आवाज देने लगी। विभा विभा कहाँ हो तुम? तुमने सब सामान अभी तक हटाया क्यों नहीं और पानी तक ला कर नहीं दिया? अनुभा जो पास के कमरे से सब देख रही थी वहाँ आ गई। क्या हुआ पापा, इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अनुभा की बात से सब पकाते हुए से अरुण ने विभा के बारे में पूछा पर उसने उसकी बात का जवाब न देकर पूछ लिया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय है क्या? अरुण चिंतित हो गया। क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मुझसे तो

परिवार समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुके स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए। अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है, उसके पति को ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए, ऐसा कौन ले गया तुमको। अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय को टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर हर सुख दुख में उसका साथ देने पर उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए। अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले अपने पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है। शायद तब तुम्हारी सहेली की माँ के पास संभालने का समय ही नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभव कुछ सोचती थी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होना तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अनुभव उनकी ओर देखती हुई बोली, नहीं पापा, मैं सहेली के बारे में नहीं उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने जीवन के इतने अनमोल और खूबसूरत साथ देने के बाद भी उनको धोखा क्यों मिला। क्या ईमानदारी से घर का ध्यान रखना और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है। आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत

सुधर नहीं रहा था। पापा ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं देना मुझे एक संशय थे विश्वासघात के माहौल में, क्योंकि वहां जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दी तो मेरी सहेली की माँ रूप व्यवहार गृह कौशल सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बातों में अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तब मेरे साथ कोई क्यों देगा? और उस सड़क पर उस सिस्टम पर हाथ फिरने लग गया।

से उसको देख रही थी। अमर होकर इस धरती पर कोई नहीं आता है, फिर जब आप नहीं रहे तब मेरे धोखे का सामना मैं कैसे करूंगी। अरुण उसके मन की उलझनों को समझता हुआ बोला, बेटे कोई भी कभी भी एकदम अकेला नहीं होता, कोई न कोई अवश्य होता साथ देने को। ईश्वर न करे परंतु यदि कभी ऐसा हुआ भी तब भी कोई न कोई तो तुम्हारा साथ देगा ही, जैसा अभी मैं तुम्हारी सहेली की माँ का साथ दूंगा। लाओ मुझे इसके पापा का फोन नंबर दो, मैं बात करती हूँ।

कॉल करती हूँ। उसके नंबर मिलाते ही उसके फोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। मैं कहूँ गया, अरे तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया, उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभव खड़ी हो गई, नहीं पापा मैंने नंबर सही मिलाया है, मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी।

कहना चाहती हो, तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनुभा की आवाज में पलखी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूँ, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है, क्या समझू इसे? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि ये तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो, इसलिए ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती है तो कुछ आपके साथ ही घर आती थी और तब आप कार बाहर खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में खड़ी करते थे। और अरुण यह सुनते ही बौखला गया। क्या बकवास कर रही हो, तुमको होश नहीं है कि क्या बोल रही हो, वो भी अपने ही पापा को? कोई कुछ भी बोल लेगा तो तुम सच मान लोगी? आत्मंत्रणा मानो उसके शब्दों में मूर्तमान हो उठी।

उसको आया था और उन डांसी से लड़का मैंने बोलना भी छोड़ दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हूँ। पर आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके उसी समय आपका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा। काश मैंने पूछा होता तो मम्मी को इतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता।

छुपाने का प्रयास कर रहा था वही पल सामने आ खड़ा हो गया है। उसने स्वयं को स्थिर चित्त कर लिया। तुम्हारी माँ को कभी कोई कमी होने दी थी क्या? उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं थी? समाज में उसकी प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं होने दी? फिर वो आपको चाहती क्या है? क्या कुछ पल अपने मन से नहीं जी सकता मैं? अनुभव सीखी तो पड़ी थी, आखिर आगे गई आपकी असलियत सामने। कुछ पल अपने मन से यदि ऐसा ही जीवन उन्होंने दिया होता था तब क्या करते आप और आपकी आधुनिकता? अरुण का क्रोध विस्फोट कर उठा। तुम होश में हो? अपने पिता से तुम कैसी बातें करती? तुम्हारी हिम्मत कैसे? अनुभव उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत? मेरी हिम्मत तो आप अब देखिएगा। और हाँ, जिस बात को सुन भी नहीं पा रहे हैं उस सच के साथ मेरी माँ को अपना पूरा जीवन जीना है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि टूटने को उनको बिल्कुल नहीं दूंगी, ना तो मैं और ना ही भाई। बस वो भी पहुंचता ही होगा। अनुभव की आवाज को दबाने के प्रयास में उसका कौरवी अहंकार मानो उसके मन को चोटी करने के लिए सिंघार उठा। जिस सामर्थ्य की धमकी दे रही हो उसको पाने की चीज की रकम मैंने ही भरी है। अनुभव पलट कर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह सब बोलने का साहस और अभी भी आपको आप बोलने का संस्कार मम्मी ने दिया है। आप यह मत सोचिएगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम वापस यही आएंगे और रहेंगे। अपना सामान समेट कर यह रूम तो अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। वह क्रोध में पागल ही होता जा रहा था। हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोगों को घर पर ताला बंद मिलेगा। अनुभव पीड़ा में भी हंस पड़ी।

सेवा अचानक से इसकी ओर घूम गई। और हाँ, सुबह दादाजी और दादी माँ आ रहे हैं यहाँ, उनको सुनाने के लिए कोई कहानी तैयार रखिएगा। अरुण के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। तुम्हारे दादाजी और दादी माँ, उन लोगों से क्या कह दिया तुमने? उस पीड़ा में भी अपने पिता की हड़बड़ाहट देख कर अनुभव हंस पड़ी। कुछ खास नहीं, बस जो सच है वही कहा है। और यह तो आप भी जानते हैं कि माता पिता अवश्य वो आपके हैं, परंतु आपसे कहीं ज्यादा प्यार वो अपनी बहू यानी मेरी माँ से करते हैं। पिता की इस शब्द करती शक्ल देख कर वह बोली थी। आपको शायद गलतफहमी हो गई थी कि नाना जी और नानी माँ के ना रहने से माँ एकदम अकेली और असहाय है। उनके साथ हम सब हैं जो उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना भी जानते हैं और आपकी सच्चाई को खोलना भी।

समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में 3 जून से SIR कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसके तहत CLO घर घर जाकर मतदाताओं को चिन्हित करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इसके सुचारू संचालन के लिए 8 कंप्यूटर ऑपरेटरों और अन्य चुनाव अधिकारियों का चरणबद्ध प्रशिक्षण शुरू हो गया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में आज रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शाम 5 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में योजना के क्रियान्वयन और रोजगार के नए अवसरों पर चर्चा की जाएगी। मोहसिन माले ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को वोट न देने के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में माले नेताओं ने कहा कि उनके दोनों विधायकों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रणव झा के पक्ष में मतदान किया था। लोहरदगा के राजेंद्र भवन में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नेताओं ने केक काटकर उनके विरोध होने की कामना की और उन्हें युवाओं, किसानों, संवंचित वर्गो के संघर्ष का प्रतीक बताया। लिंक रेट के विलम्ब पर चलने के कारण आज हटिया से खुलने वाली हटिया पूरी जारी किया गया है। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय दोपहर 2:30 के स्थान पर आज रात 7:30 करेगी। देवघर के सदर अस्पताल में आयुक्त सिकल सेल दिवस पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर मनोज गुप्ता और उपाधीक्षक डॉक्टर सूचना वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने एक विशेष जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

से ले जाओ, चाहे दुनिया की आज मानो बिल्कुल सुकून या फिर मेरे पास आकर ही मिलेगा, क्योंकि कुछ तरीके दूरी से नहीं टूटते, वो हर मोड़ पर एक दूसरे को पछाड़ते रहते। तुम्हारे कदम कहीं भी ठहर जाए मगर लौट कर आना तुम्हें मिल

से पुराने ख्वाबों की बारिश में भीगने लगा है। हवाओं में जैसे किसी यादों की खुशबू घुल गई हो और मन उसी एहसास में चुपके चुपके झूम रहा हो। तेरा ख्याल आते ही ये बेचैन दिल कहीं ठहरता ही नहीं, कभी उस राह पर निकल पड़ता है, कभी उस दिशा में छोड़ जाता है। तो ये है कि मोहब्बत में पड़ा ये दिल अब एक दीवानी बादल की तरह

सोच कर बन से हो तुम पश्चिम से जाता है तो कभी बेचैनी बन जाए दिल को मचलाने लगता है। लगता है जैसे कोई धीरे धीरे पूरी दुनिया में उतर रहा हो और दिल उसके आने

थोड़ा सा रोबीला और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट देने को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना वासी, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आके, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही गीता पिता रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।

पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया,

व्याप्त हो जाए। मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्त में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है, क्या हमारे पिता अखिलेश जी

d'avoir mal écrit son début, au dictionnaire,

0: कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है। इनमें 130% महिलाएं हैं। योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1000 करोड़ रुपए था।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रोक्सीमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हमारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
0: प्रधानमंत्री मोदी इस समय पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूँ। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूँ यहाँ पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है इतनी बड़ी तादाद में। आज यहाँ इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का संदेश दिया है। नई दिल्ली में सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्धनों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुंचाने के कार्यों को पूरा किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि जिस विश्वास को सेवा अब तेज सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही है। बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। भारत की विदेश नीति ने देश को विश्व बंधु के रूप में स्थापित किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुशल स्टेशन प्रबंधन के लिए स्टेशन मास्टरों को सशक्त बनाने संबंधी व्यापक उपायों की समीक्षा की है। रेल मंत्री ने कल वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। बैठक में स्टेशन मास्टरों के प्रशिक्षण के कार्य और उनके प्रबंधन को सशक्त बनाने पर व्यापक चर्चा की गई। इसमें मल्टी ट्रैक और उच्च घनत्व के खंडों में अतिरिक्त स्टेशन मास्टरों के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। अस्मिता चालिहा मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में आज अस्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। सेमीफाइनल में कल अस्मिता का सामना कोरिया की पार्क गांग यू से होगा।

Menschen tun. Manche Menschen

मुद्रा है, शीर्षा निर्णय की उत्पाद है,

0: आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संबोध तक
1: आसमान में सिर उठाकर बादलों को छू रोशनी का संकल्प ले अभी तो सूरज उगा
0: रेडियो

to something

अपने जो गवर्नमेंट के हमारे जो कनेक्शन है पहले करोना फ्री कर देगा, ये करने का ये विचार है, इसको जल्दी पूरा किया जाएगा।

0: যার কিন্তু ভগবানের শুকনোকে অনুরূপ কেউ কিছু সেখানে
1: हमने माननीय मंत्री से ये कहीं आग्रह किया कि स्वयं इंदुआ के लोगों पर बनी योजनाएं भू राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए यहाँ के स्थानीय निवासी की जरूरतों को देखते हुए टीम आकर एक ज्वाइंट सर्वे करके इस स्टेट की जरूरतें और प्रायोरिटीज को अगर तय करके लेकर जाती है तो निश्चित रूप से झारखंड को प्रगति के पथ पर ले जा पाएंगे।
0: राज्य की ग्रामीण विकास

Tanta TV.

0: वजन है उस वजन को दरबारी के भंडार में जब तक नहीं लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उससे मेहनत
1: की। हर प्रस्तुति श्रोताओं को अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मज

ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦਰ ਕਰਨਾ

सेकंड लाइन शरीर साहब से अच्छी में नहीं लिख पाऊंगा। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूँ। रमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना लिया, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखते हैं। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी, छोड़नी सुनरिया करेंगे।

लोग तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीर। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना वासी, और शाहरुख ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही जिसका पिता रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।

0: distinguish our divine feelings. जिन की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
1: खून से है क्यों भीगा, इसमें ये शकील अपना जख्म क्यों में खाया हूँ, पत्थरों को हरा अंदर जाहिर पड़ा होगा। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाथरूम में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूर न थे, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार शनिवार के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: इन हालात पैदा कर दिए हैं, हम स्टूडियो में रात में काम करते और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने सुने क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन इतनी

0: कि थोड़ा अवस्था से ही मैं कहीं ना कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग किया, वास्तव मेरे अंदर था और मैं बहुत विरोध किया करता था, तो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बात का व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग में भी पहुँच गई।
1: सुना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे

0: शरीर में होता है। लीवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ एस्टिमेंस योर डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियों का बढ़ेगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खाते तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर

0: God's God committee of this world. और वो इसके सम अभी दखल है मेरे अंदर शायद पैदा हो गई है।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार शनिवार के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए चंद वो सुना। हम इस स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने सुनिए क्योंकि वो फिल्म

0: सुनने चलती पुरातत्व के तत्व। लेखिका है नाजी और निर्देशन है चंद्र प्रभा वर्तनाकर का।
1: दुकान तो लगा दी मैंने, तू चाय लाया?
2: आओ सब।
1: अरे तो देना,
2: फर्स्ट क्लास चाय बनवा कर लाया हूँ।
1: अरे मुंशी जी आइए आइए।
3: अबे ये क्या है,
1: दरअसल हम लोग पुराना माल देते हैं।
3: पुराना माल समझा देते।
1: बात ये है कि ये तो बात को हमेशा घुमा फिरा कर बोलता है। वैसे हम लोग डेकोरेशन पीसेस बेच रहे हैं।

0: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो हमारी सरकार है। भाई
1: ज्यादा जबानी मक्खन बाजी नहीं चाहिए। कुछ वो
2: ठीक है ठीक है ठीक है।
1: सुनो बात किया करें।
2: मत आता हूँ, तू आदमी है या कामयाने का बाप है? अरे क्या जरूरत तू क्या है यार?
0: क्या बताए क्या बताए, उसमें उसने कानून बढ़ाया तो मुझे गुस्सा आ गया।
2: अबे वो पुलिस वाला है, वो तो कानून की बात करेगा।
0: भूल हो गई अब से ऐसी पंगेबाजी से दूर।
2: शाबाश, करोगे आगे चल कर देखा अगर मेरी बात मानोगे।
0: ये समस्या तो खत्म हो गई। अब समस्या है ग्राहकों की दुकानें की।
2: अरे केले वो भी हल हो जाएगी, बस थोड़ी बतौलेबाजी करनी पड़ेगी।
0: बतौलेबाजी?
2: अगर हाँ, भीड़ इकट्ठा करने के लिए पहले कुछ अलूल जरूर।

लेकर घूमने

0: जुर्मा कहना है ये जरूर प्रतिक्रमण कर रहा था कुछ भी हो उत्साह था
1: देखने में तो
0: अरे हजूर इनके रूप रंग पर मत जाइए सब ऐतिहासिक यानी कि तारीखी हैसियत रखती है
1: फरमाया तारीखी है
0: जी हाँ जैसे के हुजूर आप ये देखिए ये पर्दा मुलाजा फरमाइए मुलाजा फरमाइए अपने वक्त की मशहूर तबायब उमराव जान के उस कमरे का है जहाँ वो मुजरा किया करती थी
1: क्या पूछे वो हाले गिलेदार है अदा आवाजगी में हमने जमाने की कैद
0: और बंदो परवर ये रही आमों की गुठलियाँ
1: आमों की गुठलियाँ
0: हुजूर
1: समस्या ये गीता इसी हैसियत रखती है
0: जी जी हुजूर अरे इन्हें नहीं जानते आप इन्हें चचा गालिब ने चूट कर फेंका था
1: अल्लाह सुभान अल्लाह
0: भाई मिर्जा गालिब आमों को बड़े शौकीन थे
1: हुजूर
0: इस चराग को देखिए
1: है ये अलाउद्दीन का चिराग है
0: मजा फरमाया हुजूर ये वही चिराग है
1: अरे तो मियां जरा झिझक दिल को बुलाइए तो
0: हुजूर गुस्सा के माफ हो जिन्न को ना आ सके
1: क्यों भाई क्यों

0: तक तो उस विष्णु की है जिसने एक बार मौल बादशाह हुमायूं की जान बचाई थी।
1: याद आया, याद आया। हुमायूं ने खुश होकर उसे एक दिन के लिए बादशाह भी तो बना दिया।
0: बादशाह बनते ही उसने चमड़े से पीछे चलवा दिए।
1: माशाल्लाह भाई, मुझे तो ये बतख बहुत पसंद आई। नायाब है तो मैं अपने गरीब खाने की जीनत
0: बनाऊंगा।
1: क्या कीमत है?
0: अब आपके मोल भाव क्या करना हुजूर?
1: सिर्फ 50 रुपए नाइट पर खाइए।
0: हम 50 रुपए
1: इतनी नायाब चीज की इतनी कम कीमत?
0: ये लीजिए, सही समझ
1: गए। 50 के लिए ज्यादा की रकम है।
0: शुक्रिया हुजूर,
1: शुक्रिया।
0: अच्छा भाई, तो मैं चलता हूँ।
1: मैं न कहता था, हीरे की कद्र जौहरी ही जानता है। सही कह रहे हो उस्ताद,
0: पूरी थैली ही थमा दिया।
1: वाली बहुत होगा
0: उस्ताद, आप खोल कर तो देखो।
1: हाँ खोलता हूँ, खोलता हूँ। चमड़े के टुकड़े नहीं उठता। मुझे तो लगता है ये चमड़े के सिक्के हैं।
0: चमड़े के सिक्के?

तत्व अभी आप सुन रहे थे नाजरीन की लिखी ये सुर्खी। निर्देशन चंद्र प्रभा भटनागर का था। ये थी आकाशवाणी लखनऊ की भेंट। अब आज का हवा में कार्यक्रम समाप्त होता है।

मैसेज लेकर वो देखो मैं हूँ ना बाकी और पैनिक लेकर वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए।

फिनलैंड सचिन साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। रमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकेंड लाइन नहीं लिखी, बस इसको हुक लाइन लिखते हैं। वो गाना करते करते हुक लाइन

किसानों और सैकड़ों का नाम जब प्यार किसी से होता है, इस गीत को आनंदी बख्शी ने लिखा है और

0: Christian. If you did this, he paid to some extent. In the know, what
1: common is very important pillar of any GI problem is education. Nutrition, exercise, and when do you get self-excellence to your doctor? ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियों से बच सकते
0: हैं। बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम से नहीं तो खा के तुरंत हो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है और अगर हम टाइम पे ना सोए 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस बढ़ने ज्यादा और फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बात 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रही है साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राही। आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: मैं कहीं कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग कर रहा था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विमर्श किया करता था तो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर। वो कुछ लोगों ने कहा कि आपको बात का व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख
0: थी। तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे।

किशोर कुमार का गाया हुआ फिल्म का नाम है आगे। गीत रचना गुलजार साहिब की,

Je suis un peu plus de

इंटरव्यू लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार को फिल्म चहल में शब्दकार आनंद बख्शी और धुन लक्ष्मी

पर आपने तय किया कि मंडाकिनी जोशी

वो बगावती हो गए। जिससे नारी अचानक घर की बहुत समय के बाद मिथुन वापस लौट गए। श्रीमती शुभंकर ने मिथुन चक्रवर्ती ने जो कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। 1974 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ डिप्लोमा हासिल किया। उन दिनों वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पढ़ाते भी रहे। यहाँ से मिथुन मुंबई आ गए, पर काम आसानी से उन्हें नहीं मिला। गुजारा करने के लिए वो अभिनेत्री हेलेन की डांस टोली में डांसर बन गए थे। ये उनके संघर्ष के दिन थे। कभी फुटपाथ पर सोना पड़ता उन्हें, कभी टैक्सी में सोना पड़ता। यहाँ चिकित्सा

निर्देशक मृणाल सेन अपनी फिल्म मृदय के लिए कलाकार तलाश रहे थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सब कुछ रह गए दो अनजाने कौन खेले हैं गुलशन गुलशन मेरा रक्षक जैसी फिल्में आई और गई पर मिथुन हताश नहीं हुए। उन्हें पता था कि एक दौर उनका आएगा, वो दौर होगा जब दुनिया उनके पीछे भागेगी। ने उन्हें फिल्म सुरक्षा में कास्ट किया। बस गन मास्टर इसके नहीं लोगों के जहन पर छा गया। जिस मिथुन चक्रवर्ती को लोग नजरअंदाज करते थे उसे पलट कर देखने लगे। तैयार किया गया

लेकिन अंगे मिथुन चक्रवर्ती की भूमि में आ चुके थे। मिथुन 80 के दशक के युवाओं के नायक बने, आम इंसान के नायक बने। बॉक्स ऑफिस पर आम जनता उनकी फिल्में देखने के लिए उमड़ती रही। सन 1979 में आई राष्ट्रीय पिक्चर्स की सराहना, जिसके गाने आज भी याद किए जाते हैं। बरसात के इस मौसम में, बरसात हो या न हो,

I don't get any.

सब फिल्मों की बातें करना जहाँ से संभव नहीं, पर उनके करियर का एक बड़ा लैंडमार्क बनी सन 1985 में फिल्म प्यार झुकता नहीं। ये फिल्म बहुत

जाती है। एक नया खाब और इन आँखों ने किया है सिर्फ उस रात का इंतजार जिसके ख्वाबों में खूबस तेरा ख्याल धीरे से बड़ा हो जाए। उस सब नहीं एहसास आपके किसी मन्नतों की राहत आई है, संग उन्हें पदमों की आहट लाई।

विश्वास जिसके कदमों में सच्चाई की आत्मा ये दिव्य पुस्तक से अधीन लफ्ज जिसके साथ समंदर और पूरी दुनिया समा जाती है। अभी सिमट जाए तो एक नन्हा सा दिल काफी है जिसके हर धड़कन पर लिखा हो कि सिर्फ

मगर बड़ा नहीं है वो जो घुटन है उस घुटन को दबाई के बिना